पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।